गुरमुख सतगुर दे सन्मुख रहण वाले जीवन जिउंदिआं भी प्रवान ने हजूर दी दरगाह विच कबूल ने ते जदों शरीर छड़ जांदे ने ते फिर भी प्रवान ने माता दी कुखों मनुख जन्म लैंदा है पर गुरमुख सत संगत दी कुखों जन्म लैंदा है सत संगत दी कुखों जन्म लैके जो गुरु दी दित्ती हुई तरतीब विच गुरु दे दसे हुए नेम विच अपना जीवन बिताउंदा है उसनूं गुरमुख कहिंदे ने जो गुरु दे सन्मुख रहिंदा है जीवन विच भी सुगंधियां वंडदे रहे जीवन विच भी खेड़े वंडदे रहे क्योंकि गुरमुख दी टेक नाम है गुरमुख दा आसरा नाम है गुरमुख परमात्मा दे गुणा दी सुगंधी वंडदा है खुशबू वंडदा है ए गुरमुख दा दान है गुरमुख नाम दे आसरे अपनी मत नूं अपने मन नूं निर्मल रखदा है ए इशनान है गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख ने जीवन विच परमेश्वर दे गुणा दी सुगंधी वंडी नाम दी टेक रख कोई समासी किसे पासों सुगंधी आ रही सी किसे ने आके पुछया तेरे पासों सुगंधी आ रही बड़ी महक है तेरे कोल की वस्तु है जिस वस्तु करके सुगंधी आ रही जिस पासों सुगंधी आ रही सी उसने कहा मेरे पास गुलाब दा फूल है उसने गुलाब दा फूल दिखाया वेखण वाले ने वेख

0: बिगाड़ लिया,
1: वृक्ष नालों टूट गया,
0: एक टाहनी छोटी बन गई, जन्म तो उसका भी होया सी उसे टाहनी वांग, पर वो अपना जन्म बर्बाद कर गई, उसका आना निष्फल चला गया, पर जेड़ी टाहनी जुड़ी रही उसने अपना जन्म सवार लिया। जपो सतनाम श्री। जेड़े परमेश्वर नालों टुट जांदे ने उन्हां नूं मनुख नहीं कहिंदे, उन्हां नूं मनमुख कहिंदे। जेड़े परमेश्वर नालों टुट जांदे ने उन्हां नूं साकत कहिंदे, ते जेड़े परमेश्वर नाल जुड़े रहिंदे ने उन्हां नूं गुरमुख कहिंदे। गुरमुख विच जीवन है क्योंकि परमेश्वर नाल जुड़िया होया। गुरमुख नूं शुभ गुण लगणगे क्योंकि वह परमेश्वर नाल जुड़िया होया। ते जेड़ा साकत है, साकत है मुरदा, मनमुख मुरदा है, मनमुख जीवन नहीं, मनमुख विच रस नहीं, मनमुख किसी नूं गुणा की ठंडी छां नहीं दे सकता। तो वो सतनाम श्री वाहिगुरु, क्योंकि वह टुट चुके हैं। आज सतगुरु कह रहे ने मनमुख जन्म मरा, जन्म तो उसका भी जिवें मनुखा वांगू हुंदा होया सी, पर एक मनुख ने गुरमुख बन के अपना जन्म सवार लिया, एक मनुख ने परमेश्वर नालों टुट के मनमुख बन के अपना जन्म ही बिगाड़ लिया।

माली दी नजर भी नहीं। आप हुदरे बूटे उग पेंदे, एक दूसरे दे अंदर इस तरह फस जांदे ने, रस्ते दे राह भी रोक लेंदे ने, जंगल दे राह भी रोक लेंदे। इस तरह बेतरतीबे बूटे संगने उना दे अंदर खतरनाक लुटेरे भी लुके रहिंदे, खतरनाक जानवर भी पना ली बैठे। लोकी डरदे जे जंगल विच जान, जंगल दे बूटियां दी शां शां आई हुई हवा उना पत्तियां दा झुलना भी डराउंदा है। हो सकदा है उन्हां नूं फुल भी लगदे हां बूटियां, पर कोई सुंघण नहीं जांदा। तो सतनाम श्री, पर कदे किसे बगीचे च जाके देख जिन्हां नूं माली सिंजदा है, जिन्हां ते माली दी नजर है, पत्ते पत्ते ते डाली डाली दी माली नूं खबर है। उन्हां च लोकी सैर करन जांदे ने बगीचियां, आनंद लैण जांदे, उन्हां दे खेड़े देखण जांदे ने, सुगंधियां सुंघण जांदे, क्योंकि ओह तरतीब विच ने, माली दी दित्ती हुई तरतीब च रहिंदे। मनमुख

इस गरीबणी दे घर आप चल के आ गया। तन है तू मां दे मुंह चो निकल रहा है। मां वो कौन सी तू जानदी है इसनू? मां ने छाती नाल लाया पुत्र नू, बैराग विच भिज के आखिया, पुत्र रहमतां दे मजस्मे तन गुरु अर्जन दे पातशाह आप तेरे मुख विच जल पा के गए ने, तेनू दोबारा जान दे

निर्धन को पले, निर्धन को पले। पांच तरह का निर्धन पालना। पहला निर्धन पालना, गुरु का सिख दसवंध कढ़े। सारे चाती पायो, अगां अगां ज्यों प्रकरण आएगा, कोई माया का दसवंध नहीं कढ़ सकता। ए नहीं कि वह नहीं निर्धन पाल सकता, वह भी पाल सकता। ए अगे प्रकरण आणगे। जेड़े बंदगी वाले महापुरुष सारी जिंदगी जिन्होंने लेखे लाई होवे गुरु दे, वह भी निर्धन नूं किहड़े ढंग नाल पालदे ने, उन्हां दा पालना किन्ना क उच्चा है, असीं कितें पहुंच भी नहीं सकदे। उह अगां प्रकरण आउणगे। अज दा प्रकरण, पहला निर्धन नूं पालना, गुरु का सिख दसवंध कढ़े। सारे झाती पायो, इहदे विच कमजोरी ते नहीं। और दसवंध कढ़न तों बाद बड़ा सोच के लावे, लाउणा किसे किसे गुरुद्वारे दी कार सेवा लई देंदा है, वो भी गुरु नूं पहुंचदा है। लंगर लई देंदा है, वो भी गुरु नूं पहुंचदा। अजकल तुहाडे चों कई बीबियां ककारां लई सेवा देंदियां, ककारां लई, ये भी गुरु नूं पहुंचदा।

आज पूर्णमासी दा ए समा ते पूर्णमासी ओ जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रां च विसाओ हिरदे ते विसाओ।

पिता जी मेरे निरंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिता जी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे निरंकारी वीर नु कुछ ना कहो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सड़ जावन ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राए बुलार दिया पुब्बा निकल गई। कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुख गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नु की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नु मुखातब होके कहंदा की

अरदास सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैण इशनान कीता, कर दी पाठ ते दही रिड़काउं दिए, दही रिड़के सोना मक्खन कदे। बेबे ने अपने सुंदर हाथ उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखेया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच ही मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इहनू कुछ खिला। ते वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लैंदी, ते कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोलदियां कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाड़ी पहन दे अच्छा तू मक्खन चुके मुंह च पा लेना, आज भी वही पहन वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा। तली उते मक्खन पिया है, बेबे ने नेत्र बंद हो गए, निमाड़ा मन उड़िया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सचे पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने कीर्तन की समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी। ओ सचे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सचे पातशाह? हजूर कहन लगे हां मरदाने तारा भी कई तरह दियां हैं, एक तार जेदे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फायदा बन गई न पुराने आरती तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी मरदाने एक टेलीग्राम दी तार, मरदाने एक राग दी तार है, ए जरा कीर्तन हुंदा है ना ए भी तार नाल हुंदा है, तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सतगुरु जी मरदाने नू उपदेश देन देन, किसे गुरमुख ने लिखे है कि तार विन दी चीजा परोम दीए, तार विन दी चीजा परोम दीए, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी तार विच ही शब्द परो के ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी, पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विन भी चित चुराई जाती, ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी। मरदाने नेत्र बंद कर छेती पहुंची, मरदाना अगे ही चाहुंदा सी 12 सालों तू विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तू, नेत्र बंद कीते खोल दे जो खोले की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानकियाने दियां गलियां च पिया जांदा है आखो सही वाली। पर मरदाना काला है, 12 सालां तो बाद घर आया है, एना कर्म काला है। हजूर कहन लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा जी ये बचन करते सन के भाई जिस वेले गुरु नानक तलवंडी आया ते हजूर ने मरदाने नू किया, मरदाने ए पढ़ की

अगे अगे मेरा धन गुरु नानक जपाउंदा जा रहे हैं सत करतारी ते पिछे 33 करोड़ देवता मेरे धन गुरु नानक दे तलियां दी खाक चटपाउंदा आखो श्री वाहे ले मरदाने हुण बोली ना बेवे नानकी दी आस पूर्ण करनी हजूर आए अगौली आके बेबे नानकी दी हथा तू मखण चुकिया ते प्यार नाल वचन कीता बेबे बोल सत करतार बेबे दे कन्ना च सत करतार दी आवाज पई सारी सुरत कन्ना विच लैके ए आवाज तो मेरे वीरन दी जापदी है जो नेत्र खोले बेबे ने की तकिया जिस मूरत दा ध्यान पई तरदी सा मूरत सूरत बन के मेरा वीर सामने खड़ोता है वीर मेरा निरंकारी वीर वीर जी आ गए हो हां बेबे तेरिया अरदासा नु सुन के आ गए बेबे उठी तन गुरु नानक दे चरणा ते मत्था टेकन लगी मर्यादा पुरुषोत्तम हजूर ने बेबे दा हथ बेबे दा सिर अपने हथा ते लै लिया ते वचन कीता बेबे मत्था ना टेक तू वड्डी है आखो सिख लै रो पई बेबे वीरवे तू वड्डा है कि मैं वड्डी तू वड्डा है जिसने कलयुगी जीवां दा उद्धार कीता है सज्जन सगनू संत बनाया है वली कनारी दा मान तोड़िया है पत्थरों पंजे लगा के मोम करन वालिया तू वड्डा है कि मैं वड्डी ना बेबे मर्यादा भी रखी पर वीर माता नू मिले हो कि नहीं बेबे पहला तेरे कोल आया मां नू भी मिले हजूर आए अगे माता तृप्ता बेसुद पई हजूर ने बड़े प्यार नाल जाके गलुंगड़ी पाई ते के अम्मा मैं आ गया आंखों सी भाई नेत्र खुल गया अज माता तृप्ता नू 12 साल दा विछड़िया निरंकारी पुत्र मिले आंखों सी भाई मत्था चुमिया प्यार कीता नानकी लिया चोलियां वाली गंढ लेंदी हुण माता तृप्ता अपने सोहणे पुत्र नू एक चोला पवाया दूजा तीजा 12 चोले पवाते आखो श्री वाहिगुरु वेख वेख वेख करदी है ते कहंदी है नानक गुण ना बार दे नानक जी अम्मी पिता नू भी मिले हो कि नहीं नहीं माता तृप्ता ने कहा नानक फिर पिता नू भी मिले तेरे प्यार दीवाने होए फिरदे हजूर उठे मैं ते कालू कोल आए ते हजूर ने पिता समझ के मैं ते कालू अगे नमस्कार की थी ते मैं ते कालू पुब्बा मार के रोपया कहन लगा ओ नानक आज मेरी अखा खुल गई मेरे अगे मथा न टेक मैं कल जुगी जी बंदा गंदा हां तू रब्बी नूर ना पिता जी मर्यादा रखनी कालू ने कहा नानक फिर राय बुलार नू मिले हो के नहीं नहीं पिता जी फिर राय बुलार नू भी मिले हजूर सुर पे अज सारियां नू दर्शन देंदे देंदे जिस वेले राय बुलार कोल आए राय बुलार रो रहा है ते पे कहंदा है कि सदा दर्शना दी दात बख्शो आखो श्री वाहे ते अपनी याद कृपा निधान नानक को करो दात नाम तेरा जपी दिन रात तेरा नाम जपी नाम दे सबके नाम ही मिल जाएगा तो आओ प्यारी साथ संगत आप सारे तन हो जो इस समय उधर इंद्र देवता वस रहा है उधर इंद्र देवता हाजी लगवा रहा है तो इधर तुसी गुरु नानक दे चरणा में जुड़े ए प्यार है एक बारी वड्डे बाबा जी दिल्ली दियां संगतां दी अरदास सुन के दिल्ली आए जिथे हुण न्यू राजेंद्र नगर है इथे पहलां खूनी नाला हुंदा सी हुण तां बड़ियां आबादियां रसले जंगल ही जंगल सी बाबा जी ने इथे बख्श कीती पर जिहड़े आशिक सन ओह रोज पहुंचदे सन प्यारी साध संगत पटियाले दे रहण वाले सरदार हरचंद सिंह जी एग्रीकल्चर कमिश्नर पटियाले तो दिल्ली दर्शन करन वास्ते आए राय बहादुर नारायण सिंह जी राधा स्वामी मध्य उन्होंने ठहरे अमृत वेले बाबा जी के दर्शन करने वास्ते जान लगे
تو رائے بہادر نارائن سنگھ بھی کہنے لگے ہرچند سنگھ اسی بھی نال چلا گے جی صدقے چلو جی کار اچ بیٹھے آ گئے اگے کیرتن ہو رہا ہے امرت ویلے آسا جی بھی باہر تو بابا جی دھرتی پٹ کے نیوے بہندے سن براگن لگائی ہے ہن بھی کر لو درشن براگن لگا کے مستی بھی جھوم رہے ہیں تے پیاری سات سنگت بارش شروع ہو گئی سائبان نہیں سی کوئی اتنے چھت نہیں سی باہر ہی دیوان سجیا ہوا سی تو بابا جی نے اشارہ کیتا بھائی کیرتن کرن والے اتنے کپڑے تان دو تان دیتے تے بابا جی نے راگی سیاں نو کہا اے تو کام پڑھو کیڑیاں آپاں بھی پڑھ لئیے

मैं तारंग मजे ब्रह्म तार तत हर को उपजे राग्र सारंग उकडे तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बंदानंग।

0: प्राण नाथ गोविंद कृपा निधान जगद गुरु कृपा निधान जगद गुरु हे संसार ताप हरने करुणा में सब दुख हरो
1: नानक शरण पर्यो दुख भंजन

साचा सोए अवर न पेख एक सबिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अस्पति। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कह तीज एक जीव बसदा को खोदय को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक जीव पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए परगास जैसे तरु पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मेया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमहा। ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी के होए सो पला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उतार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम अतार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाय ताखुर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगय आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।